ali ab to upara siriya bhagavan are fir mai simira wo mata pita ka ye bhaiya jinke ko khiya le naya hota सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी मत करो गुमान भैया थोरा दिन के जिंदगी मत करो गुमान भैया थोरा दिन के जिंदगी जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाय के जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाय के सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवाय के सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नव अरे राम राम प्रहलाद पुकारे ये भैया अब तो गोपी पुकारे कान अरे अपने